0: and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
1: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किए सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
2: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिंग इट एज इनअप्रोप्रिएट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस हियर इन पीपल ऑफ तेलंगाना. व्हाट कुड बी सो इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज विजिट टू द यूएसए? लास्ट टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
3: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhajinagar. Their pet at home is still awaiting their return.
4: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था. इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर. कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी. इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजीनगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची. करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे. लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था. और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पर उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है. इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद, मतलब 4 से 5 सेकंड बाद, उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पर मौत हो जाती है.
5: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए. वैसे

0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के बीच कन्हैया का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख देने वाले ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से ब्रज क्षेत्र को नई पहचान दी है। तो आप भी इस जन्माष्टमी ब्रज में पधारिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा.

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht. सेहतमंद हर रोज
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन When it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history for three decades. NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
6: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
0: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
6: War struck country.
0: Hard questions.
6: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV. New rules of
5: A very good morning. You're watching NDTV. I'm Divya Vadva. We have a whole lot lined up for you, including two people who have died and five others have been injured at an incident that's taken place in Mumbai. A 22-foot Ganesh idol fell on them because the bolts and nuts were apparently not in place. We're going to get you details first. The headlines. Prime Minister Modi meets with the new team of Nitin Naveen, spelling out what is basically in focus. That includes fresh ideas, strong organization, deeper connect with the people, particularly the Gen Z, calling it a valuable interaction with the new team. Politics has played out over Rahul Gandhi student outreach in Pune, the Chhatro Ki Goonj event that is being termed as Paiso Ki Goonj by the BJP, alleging that the Congress paid 10 crore rupees to get those people at the event. The NHRC has directed the Punjab government to probe the allegations that Chief Minister Bhagwat Mann's wife, Gurpreet Kaur, had demanded 5 crore rupees to suppress, to hush up a rape case. Those are the allegations that are being made against her. And what is now going to be taking place is an investigation and action within a matter of 2 weeks. M.K. Stalin admits a defeat and failure on his part, and that of the party says it's time for a revamp. Meghalaya government has formed an SIT in order to investigate what happened on the 19th of August, where violence had erupted, establishing the sequence of events there at the rally, with reports of stone pelting at Assam-registered vehicles. But it is the chief minister giving out assurances in regard to Assam. Let's begin with breaking news coming in from Tamil Nadu. It is the former Chief Minister M.K. Stalin who slammed the new Chief Minister of the state, the actor-turned-politician, the Chief Minister now, Vijay. Vijay is treating the assembly like a cinema set, is what is being said by the former Chief Minister and the Chief of the DMK, M.K. Stalin. Stalin has said that the Chief Minister is busy changing names of our schemes, Vijay is delivering punchy dialogues, and it's a win or lose as far as the DMK people are concerned, and people are with the DMK party, is what M.K. Stalin is saying. That he's drawing parallels and saying the chief minister is more of an actor, and which is why he's delivering those kind of punches, and you know, he's looking at the frills of it all, and that is changing names of our schemes, but not really coming down to the grassroots levels of doing work. Listen in.
7: இப்போ இருக்கிற முதல்வர் நம்ம கொண்டு வந்த எல்லா திட்டங்களுக்கும் பேர் மாத்ததுல பிஸியா இருக்காரு. சட்டப்பேரவையை சினிமா செட்டுன்னு நினச்சி பஞ்ச் டெலாக் பேசுகிறாரு. நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையோட பின்னணி பிணைஞ்சிருக்கக்கூடியவங்க நாங்கள்.
5: Vijay, my colleague joining us in order to get us details. Vijay, of course, you know, drawing parallels between his past life of being a real actor, saying that that is also seemed to be playing out in the assembly, saying that he's treating the assembly itself like a cinema set. Before I come to you, let's just cut across to Prime Minister Modi here. Let's just get you details of what is happening here with Prime Minister Modi there, interacting, meeting with...
8: And this is just the beginning. Generally, we say that it's just a warm-up for Skyroot. Abhi shuruaat hai. And next year, mid tak, hum ek launch per month. हम कर रहे हैं एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर तीन फैक्ट्री बन चुका है एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे
9: एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है सर इसको अभी हमने तैयार किया है इसकी टेस्टिंग जारी है
10: उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का
9: स्काईरूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट उसके बाद से बढ़ गया है
10: अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है
9: वो बहुत काम आ रहा
10: है दुनिया आप भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है
11: आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं
10: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है
8: हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं।
2: हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनी सभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
10: कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है, और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
11: दिस रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट विल गो टू स्पेस, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit.
12: We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space.
13: My name is Antariksha, my co-founder Monica is also here. Sir, we are India's first space pharma startup. We are making satellites that can go to space and pharmaceuticals manufacture and take it back from Antariksha. What is
10: your name, Antariksha? What are your family's people in space before?
13: Yes sir, my mom didn't put it.
14: एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला, 8 लॉन्चेस के लिए, और मोस्टली इंटरनेशनल है।
15: अभी तो 10 लाख पावर के साथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इंफॉर्मेशन।
16: चलिए आपके लिए, ताकि एक याद बनी रहे, आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: Jante hain? मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस, मोदो एलीट।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: particularly good at vibe coding. At least, not yet. But when I looked at the results after 11 minutes of it running the prompt, I was amazed. It not only generated the website, but also created the elements that would go on the website, piece by piece.
1: The results are finally out. Grok tops our list. Gemini is a very close runner-up. The other two, ChatGPT and Claude, are very impressive models. But when it comes to full capability, they do fall behind. What do you think about these results? Do let us know in the comments. See you guys in the next one. Until then, keep following Tech360 only on NDTV.
2: All right, it's been an action-packed episode. We might need
3: the
2: to
3: the most
2: refuel.
3: Interesting story of the week has
2: the
3: to do with comparative advertising.
2: Location. Hello, buddy. What are you doing?
3: You're in my frame and you're shooting the wrong show. Okay,
2: this is some complete multiverse action happening over here. The hook is what you're shooting.
3: Yes.
2: All right. That's also very close to my heart. So why don't we take a short commercial break here on Tech360. I'll see you on the other side and then we'll shoot the hook as well. See ya.
4: सत्रह वर्षों का धैर्य, हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों की अथक मेहनत और विकास का एक विराट संकल्प, धरती की गहराइयों में तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लीमनाबाद टनल विकास की इसी नई धारा का प्रतीक बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई के दायरे को लगातार बढ़ा रही है।
5: ये 500 जिलों में 2.5 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी, योजना लगाने करे ये पूरा क्षेत्र बनने वाला।
4: बरगी व्यापवर्तन परियोजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद टनल के माध्यम से नर्मदा का जल बिना बिजली और बिना पंप विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा।
6: हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नई उम्मीदें लाएगी।
4: इस परियोजना से क्षेत्र के 1450 गांव

0: To some other stories that we're tracking, politics has now erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out at Rahul's event, alleging the party brought a paid crowd and paid influencers to attend the event. The BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying that there is no real impact on the youth yet. But the Congress has hit back. They've rejected the BJP's charges and said that students and youth have come to hear Rahul Gandhi and share their views, and that no one was brought to the event by offering money.
1: अब युवा इस देश का, इस देश के बच्चे, इस देश के स्टूडेंट राहुल जी को सुनने के लिए और राहुल जी को आपने बात को बताने के लिए आए। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि हमने पैसे देकर लाया है, उन बेवकूफ को बताओ या आकर देखे कि पैसे देकर आए हैं या खुद आए हैं, इसका जवाब उनको यही मिल जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो होते हैं, झूठ नैरेटिव फिक्स करने वाले होते हैं, उसको कितना भी आप कोशिश करो, अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे नहीं, राहुल गांधी तुमको रोकेगा, तुम राहुल गांधी को रोक नहीं सकते।
0: And while we're talking about the 2029 elections, let's also not forget that there are Punjab elections that are just around the corner. And just few months before that, there is a political row that has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwat Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe that was done to allegedly suppress a rape case. Following the claims, Bhagwat Mann's wife has initiated a legal proceeding against the former judge. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint and directed the Punjab government to probe the allegations. The Chief Secretary, the DJP, have been asked to submit an action taken report. And while all of this is happening, Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking the Chief Secretary and DGP to place the facts before the NHRC. On the other hand, the Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened of legal action if an apology is not issued within 24 hours.
2: Punjab and Haryana High Court ke ek purv nyayadhish Shri Ranjit Singh ji ne ye baat batayi hai ki Punjab ke jo mukhyamantri hain Shri Bhagwant Mann, unki patni ne बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
3: एलिगेशन हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तमाम
4: जब झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स या तो वो माफी मांगे, नहीं तो

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्गन मसाला।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। Telling the stories

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। Across the country,
1: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Celebrate Raksha Bandhan with Samsung Galaxy. Own the Galaxy S series starting at just rupees 73 per day and the Galaxy A series starting at just rupees 50 per day.
1: विगत 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार के सुशासन एवं निवेश फ्रेंडली नीतियों से उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए, साथ ही निवेश

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: calling him as irrelevant in politics. He doesn't know politics. Even he is party's two MLA continues to stay with the DMK party. Those two MLAs of MDMK are not trusting Vaiko. That's why he is making irrelevant statement.
1: All right, Vijay, thank you very much for sharing those details with us. With that, we move on to some other stories that we are tracking in the broadcast. And this is regarding the sugar price rise that are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting pressure on sugar availability and pushing up prices. Also, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging that sugarcane supplies are being diverted for ethanol while attacking the government over the broader rise in the cost of living. But the government has rejected the opposition's claims. Government has said that ethanol production is not driving sugar prices, stressing that adequate sugar stocks are available and that a stable supply for consumers has been ensured.
2: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
3: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां खराब होंगी. और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फ़ायदा हो रहा है.
4: 12 साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना. शुगर में जो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है अब साखर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा. तो कहाँ से आएगी ये सब चीज़ें? सरकार को पता होना चाहिए. आपने आपके मंत्रियों को बोला है कि यूनिवर्सिटी में जाओ और जिंद से डायलॉग करो, वो बच्चों के घर में जाइए किचन में और उनके माँ और पिता से डायलॉग करिए.
5: इस प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है. वैसे सर्वजन को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी कच्ची चीनी विदेशों से भी इंपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ होर्डिंग ना हो, होर्डिंग के तरह उनको दाम ना बढ़ाएं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है, त्योहारों में कोई कमी नहीं होगी. इसलिए लोगों को इनके तमाम अफवाहों से बचना चाहिए. ये ना करें लोग कि अभी खरीद लो, ज्यादा खरीद लो, कहीं मिले नहीं, बिल्कुल मिलता रहेगा.
6: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस बट ऑल्सो पोलिटिकली. सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस मिस्टर पवन खेरा, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द शुगर प्राइसेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट द.
7: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
6: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
1: A political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwat Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated in the future. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint and directed the Punjab government to probe the allegations.

0: The Chief Secretary and DGP have been asked to submit an action taken report. Meanwhile, the Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking the Chief Secretary and DGP to place the facts before the NHRC. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within 24 hours.
1: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
2: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
3: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तमाम
4: झूठ की हद पार हो जाए तो उसका जवाब सिर्फ सियासी नहीं होता, कानूनी भी बनता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके जीजा जी सरदार रणजीत सिंह जी ने एक इल्जाम हमारे मानयोग सीएम सरदार भगवान सिंह मान जी उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान पे लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और आज डॉक्टर गुरप्रीत जी के द्वारा उनको लीगल नोटिस कानूनी नोटिस भेजा गया है कि विद इन 24 आवर्स या तो वो माफी मांगे नहीं तो कानून के कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा।
0: With that, it's time for us to slip in our very quick break. Don't go anywhere. News and update continue here on NDTV.

0: erupted over Rahul Gandhi's student outreach program in Pune. BJP has hit out at the Rahul event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to attend the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth. But the Congress has hit back, rejecting the BJP's charges. Congress says that students and youth came to hear Rahul Gandhi and share their views, and that no one was brought to the event by offering money.
1: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
2: ये जो माहौल है, अब युवा इस देश का, इस देश के बच्चे, इस देश के स्टूडेंट्स राहुल जी को सुनने के लिए और राहुल जी को अपने बात को बताने के लिए आए। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि हमने पैसे देकर लाया है, उन बेवकूफ को बताओ या आकर देखे कि पैसे देकर आए हैं या खुद आए हैं, इसका जवाब उनको यही मिल जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो होते हैं, झूठ नैरेटिव फिक्स करने वाले होते हैं, उसको कितना भी आप कोशिश करो, अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे नहीं, राहुल गांधी तुमको रोकेगा, तुम राहुल गांधी को रोक नहीं सकते।
3: सुना है आजकल राहुल गांधी की नकल करने के लिए काफी बीजेपी के लोग सामने आए हैं। मोहन भागवत जी ने करके देख लिए, हशर क्या हुआ आपके सामने है। नकल करने के लिए ईमानदारी की शक्ल भी लगती है, वो बीजेपी में किसी के पास है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देवेंद्र जी, आप क्या जवाब दोगे अगर कोई खड़ा होकर पूछ लेगा कि सर्पदंश से आश्रमशाला में बच्चे मर गए, आपने क्या किया? एमपीएससी में फूड इंस्पेक्टर का पेपर टूट जाता है, फार्मासिस्ट का पेपर लीक हो जाता है, क्या जवाब दोगे? जनजी तो सवाल करेगी।
0: मूविंग ऑन टू द अदर स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग, देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल राव ओवर द पिच within the TVK of making Chief Minister Vijay the Prime Ministerial candidate. The Congress has now hit back at TVK after TVK's pitch for Vijay as the Prime Minister. Congress MP and party's Tamil Nadu Chief Manikam Tagore has hit back at TVK ministers and said that they are still in fan club mode. He also added that Congress's way of working is different from the TVK. Several TVK ministers have backed Vijay for the Prime Ministerial face, and Tamil Nadu Minister K.A. Sangotian has said that Chief Minister Vijay has capabilities to rule the nation in future. In fact, there was another Tamil Nadu Minister who said that today's chief minister is going to be tomorrow's prime minister.
4: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க மவுண்ட் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள், அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
5: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன், புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
6: அதுதான் நம்ம தலை.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हैं, वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, बिजनेस में हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, तो वो लगना चाहिए कि वो लड़ भिड़ रहे हैं न्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूज़ ब्रेक हो रही है, ये लोग सो रहे हैं या वीकेंड मना रहे हैं, या फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि खबर आ रही है जा रही है, हम लोग हरकत में हैं कि नहीं, कि लगना चाहिए कि ये 24 घंटे का निरंतर लगातार ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल है। पहले वो एनर्जी और वो पैशन आपके न्यूज़ रूम में, आपकी स्क्रीन पर, आपके टिकर पर, आपके ट्विटर हैंडल पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पर दिखना चाहिए कि ये न्यूज़ में। दूसरा ये कि आप ये नहीं मान सकते कि हम लोग रेस में हैं, क्या आप लोग रेस जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं। ये हमने जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहते थे कि हाँ इंडियन टीम गई ओलंपिक्स में, हमने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ। और टीम में वो जज्बा हो कि हम लोग जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीतने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो न्यूज़ को आप स्ट्रेंथन कीजिए कि आपके चैनल की कोई रेलेवेंस हो। ऐसा नहीं हो सकता कि NDTV क्या दिखा रहा है, इससे किसी की सेहत पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है तो भी नहीं है तो भी। मतलब कई सारे चैनल इतने रूखे सूखे से हैं कि वो दिखाएं करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NDTV पर खबर चलती है तो व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के हर गलियारे तक, चेन्नई से लेकर दुनिया में आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वहाँ पर उसका असर है। ये मुझे पता है क्योंकि फ़ोन मुझे आता है कि खबर है, चैनल का इम्पैक्ट है, उसका रेलेवेंस है, ये बात है। तो पहली बात तो ये है कि ब्रांड का रेलेवेंस होना चाहिए, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऑडियंस आपको देख रही है कि नहीं। NDTV में एक वक्त पे ये सोच थी कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमें देखते नहीं हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये रेटिंग वेटिंग सब बर्बाद है, इससे कुछ होता नहीं है और हम रेटिंग के पर। मैं ये नहीं मानता भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं, वो इंस्टाग्राम पे हो, एक्स पे हो, लिंक्डइन पे हो, TV पे हो, YouTube पे हो, तो आपको दिख ही रहा है ना। आप ही नहीं कह सकते ये मेरा वीडियो तो बेस्ट वीडियो था, इसको किसी ने देखा नहीं लेकिन मेरे सवाल इतने अच्छे थे कि उनको समझ नहीं आया, ये कोई मतलब नहीं। इस लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो दूसरा हमने कोशिश की कि जो हमारा काम है जैसे यूट्यूब पे, सोशल पे, डिजिटल पे, क्योंकि पिछले कई सालों में कई सारी फाइनेंशियल दिक्कतें थी, कई सारे लीगल चैलेंजेस थे, तो जो प्रयोग बाकी कंपनियों में हुए वो इतना यहाँ पे नहीं हुए क्योंकि टीम बाकी चीज़ों में फंसी हुई थी। तो उन चीज़ों को हमने मजबूत करने की कोशिश की। और तीसरी कोशिश हमने की कि एक NDTV मल्टीवर्स बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ें, जिसमें लाइफलाइन जो कि हेल्थ केयर, एंटी एजिंग, वेलनेस, इससे जुड़ी हुई है, लॉन्च पैड जो कि करियर प्रोग्रेशन, अपस्किलिंग, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, NDTV गुड टाइम्स जो कि लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, लग्जरी, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है, NDTV ऑटोमेट जो कि गाड़ियों के बारे में हम खबरें दिखाते। तो इस तरह के कई सारे वर्टिकल्स पे हमने काम करना शुरू किया है। एक तरीके से जैसे आप मानिए कि अभी आप पौधा लगा रहे हैं, ये पेड़ बनेगा। जो हमने कोशिश की है पिछले 14 महीनों में वो ये है कि इस तरह के पौधे लगाए जाएँ जो कि एक मल्टीवर्स बने, कि आपका न्यूज़ है वो आपका कोर इंजन है, उस कोर इंजन के इर्द गिर्द आप अलग अलग नए पिलर्स बनाएं, वो पिलर्स आपके लिए कम्युनिटी बने, आपको अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें, और साथ ही साथ उसी तरीके से आप एक नया NDTV बनाएं।
1: राहुल, देयर इज अ परसेप्शन, यू नो, व्हेन आई इंटरैक्ट विद इंडस्ट्री फोक्स, दे से दैट NDTV इजंट मेकिंग इनफ इंपैक्ट एडिटोरियली, व्हाट वुड यू से ऑन दैट?
0: यू नो, पीपल आर एंटाइटल्ड टू थिंक व्हाटएवर दे वांट, व्हाट समबडी एल्स वर्किंग इन सम अदर न्यूज़ रूम थिंक्स फ्रेंकली इज ऑफ नो कंसर्न टू मी। व्हाट इज फार मोर इंपॉर्टेंट इज whether those who are in the news ecosystem, those who we are reporting on, or more importantly, those who are watching us, whether they feel we are making an impact or not. When our teams were in Chennai covering the swearing-in of Vijay, or when we were in Bangalore when the leadership transition happened, there were dozens of people coming over to Shivarur, Veera Raghav, Vasudha, Venu Gopal, saying, oh, we saw you on NDTV, can we get a photograph? That is impact. What those people think, that matters to me. What some person sitting in some newsroom thinks of us is inconsequential. That is real impact. I'd gone during the Bihar elections to, you know, these very impoverished parts of Bihar, beyond Purnia, Kishanganj. There people came up and said, अरे हमने आपका ये वाला इंटरव्यू NDTV इंडिया पे देखा था, अरे आप तो मखाना के खेत में कूद गए थे, दिस इज इन प्लेसेस लाइक किशनगंज एंड दिस इज NDTV इंडिया एंड वी जस्ट अबाउट स्टार्टेड एंड आई एम हार्डली इवन कमिंग ऑन एन एंकरिंग। दैट इज हाउ डीपली पेनिट्रेटेड द आइडिया ऑफ NDTV इज। दिस इज नॉट अ नॉर्मल न्यूज ब्रांड, दीज आर फोर मैजिकल लेटर्स रोहेल, NDTV। What some jealous competitor sitting in a rival newsroom thinks of our editorial impact is completely inconsequential. Or those who matter, from the White House in Washington to Kartavya Bhavan.

0: ये क्या थ्री एडवाइस आपकी रहेंगी मेन मेन?
1: नहीं, सबसे बड़ी एडवाइस तो है कि अपना काम ईमानदारी से करो, ये पैसे लेके खबरें मत दिखाओ। ऐसा कई भाई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, सब नहीं, उनमें से कुछ मैं अभी इलेक्शन कवर करने गया था, कईयों का रेट कार्ड निकला हुआ है कि इतने दोगे तो ऐसा हो जाएगा, एक रील के इतने, एक वीडियो के इतने। ये तो गलत है बॉस, ये तो एकदम ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा नहीं मानना कि जैसे ये कह देना कि सारे मेन स्ट्रीम चैनल बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है, ये ठीक नहीं है। उसी तरीके से ये कह देना कि सारे इन्फ्लुएंसर्स बिके हुए, वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि अपना काम वाकई में इंडिपेंडेंस के साथ, एडिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ करें, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनकी राय से इत्तेफाक रखूँ या ना रखूँ, मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करें, बुलंदी से बेखौफ होकर अपनी बात रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए, और उनकी मैं इज्जत भी करता हूँ। दूसरी तरफ कई ऐसे भी हैं जो कि पैसे लेके आप उनसे कुछ भी बुलवा लो, उनको पैसे दो, कोई ब्रांड इंडोर्स करना हो, कुछ करना हो, कोई ट्रेंड चलाना हो, ये वो, इतने पैसे दो, मार्केटिंग टीम देगी या कोई पार्टी देगी, वो कुछ भी कर देंगे। ये तो गलत है। वो अब मेन स्ट्रीम चैनल करे तो भी गलत है, कोई इन्फ्लुएंसर करे तो भी गलत है। तो मुझे लगता है ये जो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइनरी बना देते हैं कि सही गलत, मेन स्ट्रीम बस, ऐसा नहीं है बॉस। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई संस्थान हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत मेहनत से, शिद्दत से अपना काम करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के बीच में भी कई सारे हैं जो कि बहुत एफर्ट से अपना काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेरा ये है कि साइड ना लो, ये जो एक फैशन है कि रील में या वीडियो में लाइक सब्सक्राइबर्स तब बढ़ेंगे जब कुछ एजी बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो वास्तविकता है ज़िंदगी, वो बहुत ही गंभीर है, उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, सरकार हो या विपक्ष हो, कुछ वो अच्छा करेगी, कुछ बुरा करेगी। आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अच्छी बात को अच्छा बोलो, बुरी बात को बुरा बोलो। ये कह देना कि सभी कुछ खराब है या ये कह देना कि सभी कुछ अच्छा है, वो दोनों गलत है। मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए, गुड सेंस होना चाहिए आपकी कोशिश। आखिरकार हाँ या ना नहीं है भाई, उसमें कई सारे शेड्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, मुद्दों के बारे में गंभीरता से, गहराई से सोचने की ज़रूरत है। ये रील में कि दौड़ जाए मेरा इंटरव्यू या दौड़ जाए मेरी रील, वो डिटरमिन करोगे तो यू आर जस्ट स्लिपिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स।
2: राहुल, व्हेन यू जॉइन एनडीटीवी, इट वाज फेमसली सेड बाय समवन, यू नो आई नो दैट एनडीटीवी इज नाउ डेड, व्हाट डू यू मेक ऑफ दोस कमेंट्स?
1: यू नो, आई डोंट थिंक एनी वन पर्सन कैन डिटरमिन वेदर एनडीटीवी लिव्स और डाइज। यू नो, फॉर थ्री डेकेड्स अ लीजन ऑफ फैबुलस जर्नलिस्ट, एडिटर्स, एंकर्स, प्रोड्यूसर्स, वीडियोग्राफर्स have worked on building this brand. The connect it has with audiences in India, internationally, is very deep. It is the work that we will do that will determine how this brand stands, thrives, and heads into the future. I know that there are people in multiple newsrooms that would like nothing better than for NDTV to die, because an NDTV which is alive, an NDTV which is kicking, an NDTV which is breaking news, in Davos, during the budget, during elections, is their worst nightmare. You don't want a competition, and you know who can compete with you, you know who can beat you, you know who can outthink you. And naturally, if I have a competitor I'm really worried about, I'd like that competitor to die. It's the most obvious, instinctive human reaction. And that's fine. I mean, I don't think anybody can kill NDTV. The idea of NDTV is an idea that's very deeply rooted in the fabric of the minds of our consumers. My responsibility is to keep that idea alive, to build on it, to give it a manifestation in its new avatar, which people connect with, they like, they watch, they appreciate. And that's what we're working towards. And that is what will determine, Rohil, whether NDTV lives, thrives, or dies. And no one person's like or dislike has anything to do with that.
3: Now, News 18 India has a tagline, Desh Nahi Jhukne Denge. Republic Bharat says Rashtra Ke Naam. And NDTV India recently rebranded itself to Bharat Ka Vishwas. And of course, overall, you're getting a new face. Tell me, what editorial standards and measurable outcomes do you have to determine that the channel and the network has actually earned Bharat Ka Vishwas, and it's not just a rebranding process around the tagline?
1: It's very important for NDTV to be a big tent of ideas, of thought, of shades of opinion. It's not just one particular ideology or one point of view that prevails. That, to me, is very important. If there's something good that is happening, you should be able to appreciate it. If something is going wrong, you should be fearless and able to question it. The idea that you've already taken aside, like there are certain anchors and news organizations where you don't even have to turn up their audio because you already know what they're going to say. it's so predictable. I think that's wrong.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Reject Chief Minister Vijay as the next Prime Minister. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore hits back and said TVK ministers are still in mindset of the fan club. He also stressed that Congress approach is different than TVK. And NHRC has directed the Punjab government to probe the allegations that Chief Minister Bhagwant Mann's wife demanded 5 crore to suppress a rape case. CM's wife denies any sort of such claims and says she's ready to face all investigation. Prime Minister Narendra Modi interacted with the chief executive officers and founders of 20 space startups in New Delhi. During the interaction, Prime Minister called for wider application of space technology to improve the lives of people. And another TVK minister tacitly pitching Vijay as the Prime Minister. Finance Minister Mary Wilson, now our leader, is going to the next stage, that is the national level. That is the word coming in from one of the leaders in the state of Tamil Nadu. And of course, it's coming in for the newly sworn-in Chief Minister Vijay. She has said that one leader is establishing in national level, none other than our Chief Minister, our brother only. It is very clear mandate. See in 2029 how big the change would really look like. Once again, pitching him as the Prime Ministerial candidate.
1: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
0: And that's the word coming in, that Prime Minister's pitch, Vijay could be the next Prime Minister. That's the pitch coming in from his own colleagues, from his own cabinet ministers. And not the first time that a pitch of this nature has been made. And Congress has hit back at TVK after TVK's pitch for Vijay as the Prime Minister. Congress MP and party's Tamil Nadu chief Manikam Tagore has hit back at TVK ministers and said that they are still in the fan club mode. He also added that the Congress way of working is very different from TVK, and TVK ministers have backed Vijay for Prime Minister's face. Tamil Nadu Minister K. Sengotian has said that CM Vijay has capabilities to rule the nation in the future. Another Tamil Nadu minister, Jagdishwari, has said that today's CM is tomorrow's Prime Minister.
2: அதனால் நீங்கள் அவங்க ரசிகர் பண்ணுற மோடில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
3: புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
4: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய
5: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: And BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team with Rahul Gandhi. On the other hand, he continues to organize Chhatron Ki Goonj across the country. So both political parties, the key national political parties, are making an outreach to the younger generation. Now the BJP trio teams brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tare and OP Chaudhary, a mix of young leadership, organizational experience and state level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking conversations to campuses, government schools, social media, emerging spaces like AI and skilling. Rahul Gandhi, on the other hand, is intensifying his youth outreach through their flagship program, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence and aspiration at the heart of this message.
6: नहीं नहीं वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे क्योंकि जेन जी जिस तरह उसका विजन है वो जो देश को देखना चाहते हैं सोसाइटी को देखना चाहते हैं जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जेन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है जेन जी रूठे हुए हैं
7: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
8: It's a big irony that on one hand they keep talking bad about the Gen Z. Even Prime Minister himself has come out with a lot of criticism and the entire cabinet and ministers have been criticizing the Gen Zs for so long. And now they have realized they have to work with them. This only goes to show that BJP doesn't care. It is only an electoral gimmick.
0: And politics erupts over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out at Rahul Gandhi's event, alleging that the party brought a paid crowd, paid influencers to attend the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying that there is no real impact as far as the youth is concerned. But Congress has hit back, rejecting BJP charges. Congress says that the students and youth came to hear Rahul Gandhi to share his views and no one was brought to the event by offering money.
9: Maharashtra ki jo Gen Z, Maharashtra ke jo yuva, aaj is maidan par the, 25,000 log, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई किसी को पैसा नहीं दिया गया सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए जहां तक राहुल गांधी का सवाल है स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते मैं ऐसा मानता हूं खाने के दांत अलग है दिखाने के दांत अलग है
10: ये जो माहौल है अब युवा इस देश का इस देश के बच्चे इस देश के स्टूडेंट राहुल जी को सुनने के लिए और राहुल जी को आपने बात को बताने के लिए आए कुछ बेवकूफ कहते हैं कि हमने पैसे देकर लाया है उन बेवकूफ को बताओ या आकर देखे कि पैसे देकर आए हैं या खुद आए हैं इसका जवाब उनको यही मिल जाएगा झूठ के पुलिंदे जो होते हैं झूठ नैरेटिव फिक्स करने वाले होते हैं उसको कितना भी आप कोशिश करो अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे नहीं राहुल गांधी तुमको रोकेगा तुम राहुल गांधी को रोक नहीं सकते
11: सुना है आजकल राहुल गांधी की नकल करने के लिए काफी बीजेपी के लोग सामने आए मोहन भागवत जी ने करके देख लिए हशर क्या हुआ आपके सामने है नकल करने के लिए ईमानदारी की शक्ल भी लगती है वो बीजेपी में किसी के पास है ऐसा मुझे तो नहीं लगता देवेंद्र जी आप क्या जवाब दोगे अगर कोई खड़ा होकर पूछ लेगा कि सर्पदंश से आश्रमशाला में बच्चे मर गए आपने क्या किया एमपीएससी में फूड इंस्पेक्टर का पेपर टूट जाता है फार्मासिस्ट का पेपर लीक हो जाता है क्या जवाब दोगे जेन जी तो सवाल करेगी
0: A Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with message saying, and I'm quoting, Silent Guardian. Take a look at this report filed by my colleague Deeksha.
12: Rahul Gandhi, leader of opposition or the real-life Batman? Posters have appeared outside of 24 Akbar Road talking about how Rahul Gandhi could be the real-life Batman. Now let's take off that cover. There are posters talking about him as a watchful protector and that the leader of opposition, Rahul Gandhi, is now the real-life Batman. These have been posted after the pellet gun injuries surfaced and Rahul Gandhi pushed to make a move for an FIR being filed. Now the government capitulated and the Delhi police has finally filed an FIR. So is he the silent guardian? Are we talking about Rahul Gandhi being a real life Batman? Who is Batman, you ask? There are so many things we can talk about here. It is all about Rahul Gandhi's intense involvement in the student protests and then talking about all the problems that the students faced.
0: Well, interesting political analogy, keeping the Gen Z in mind. Congress leader Pawan Khera has praised the image, saying, not all heroes wear capes and some wear a white t-shirt. BJP has hit back. Listen into the voices.
13: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
14: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: All right, some latest news coming in. An incident of assault on a doctor has come to light in the famous Bhanu Jyoth Hospital of Kalyan East. When Dr. Yogendra Jaiswal was explaining to the patient about his illness, the patient's son, Vineet Deshmukh, entered the cabin and violently attacked him. FIR has been registered in Kolsewadi Police. That's the word coming in. The image is on your screen right now. Another doctor on the duty has been assaulted. You'd remember an instance of this nature in Maharashtra has been reported earlier also, when it was a corporator that was involved. And right now, this incident coming to light where another doctor on duty has been assaulted. Multiple doctors, especially working at government hospitals, have complained that they fear for their physical safety, they fear for their life, and attacks of such nature, physical attacks of such nature, are not uncommon. All right, that's the word really coming in, that this is a fresh attack that has happened on a doctor. Let's now move on and have a look at another piece of breaking news which is coming in at this point. And this is SP Chief who has hit out over Marathi mandate. Akhilesh has said that respect everyone, mother tongue. Akhilesh has also said that the violation of constitutional rights has happened and BJP is creating a pressure on the poor people. It's further goes on to say Akhilesh Yadav has made a statement that government should have a big heart and a big mind. That's the word coming in. SP Chief Akhilesh Yadav, they're giving a statement that government should have a big heart and a big mind and they should not create pressure on the poor people. Violation of constitutional rights of individuals is not something that is respected and acceptable, and everybody's mother tongue should be respected.
15: अरे क्या बताऊं यार, मुझे मराठी नहीं आता.
16: अच्छा,
15: अभी मुंबई में हो गया, बोलते हैं कि जो मराठी बोलेगा वही गाड़ी चलाएगा, कहीं तो लाइसेंस जमा कर लेंगे, 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर देंगे और 10-15 हजार रुपए की फाइन भरना पड़ेगा. तो क्या बताओ, हम लोग इतना थोड़ी कमाते कि 10-15 हजार रुपए की फाइन और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए कैंसिल करेंगे.
16: अच्छा,
15: किस वजह से चलाए बताओ,
16: तो
15: आपका मन ही नहीं करता यार.
16: तो आप ऐसे बैठे रहोगे क्या?
15: आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए. अगर मैं चलाने जाऊंगा कहीं
16: तो आपकी क्या राय है उधर, क्या राय है सरकार से?
15: मैं चाहता हूँ कि यार अभी हम लोग गांव के लोग हैं.
16: अच्छा,
15: कोई यूपी बिहार हर जगह जगह से लोग आया हुआ है. अब बताओ, अगर कोई इंसान से कहोगे कि तू 1 महीने के अंदर मराठी सीख जाओ, जिसको हिंदी पढ़ना नहीं सही से आता है, वो कैसे एक महीने में मराठी सीख सकता? प्रॉपर टाइम दिया जाए कि इतने दिन आपको दिया जाता है, अगर मराठी सीख जाते हो तो गाड़ी चला लोगे, अन्यथा नहीं।
16: सही है।
15: पर अभी क्या बोलूं?

0: लेके जाओ।
1: अच्छा,
0: अगर नहीं आया मराठी तो वो लाइसेंस के साथ में परमिट भी कैंसिल।
2: अभी फाइन फाइन कितना किया है कि नहीं किया? अभी
0: अभी 25,000 मांगा था।
1: अब क्या करोगे तुम?
0: अब कुछ नहीं करेंगे, मराठी सीखेंगे, मराठी सीख के जाएंगे दोबारा से, दोबारा जाके फिर करवाएंगे।
1: ठीक है भैया।
3: Right, my colleague Abhishek from Mumbai spoke to a few auto drivers on the Marathi language row. Listen in as to what these people have to say.
4: The implementation of Marathi mandate to drivers of auto and taxi in the cities across Maharashtra has begun, and especially speaking about Mumbai, the drives are being conducted. And in the middle of this, Akhilesh Yadav, the former chief minister of Uttar Pradesh, has taken a direct attack on the Maharashtra BJP-led government and has put across serious questions on this entire implementation and termed it as a mere politics over language. We have with us many rickshaw and auto drivers here. Let's try and understand what exactly do they feel about this recent implementation on the field. Akhilesh Yadav hai Uttar Pradesh ke purv mukhyamantri, unhone पोस्ट किया है और कहा है कि ये तो भाषा के नाम पे राजनीति हो रही है। हमारे जो दोस्त भाई वहाँ काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से परेशान किया जा रहा है, रोज़गार एक दिन का कमा के कोई घर जाता है, कितनी तकलीफ़ होती है?
5: बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एकाएक जो है चालू हो गया, इससे थोड़ा दिक्कत तो आ ही गया है।
6: इस प्रजातंत्र राज्य के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है क्या कि मार के सिखाया जाए? हाँ, लोगों को बोला जाए, बढ़ाया जाए, सीखने की समय दिया जाए। ये मान लीजिए मैं यहाँ से पंजाब काम कर रहा हूँ या गया हूँ बाय द वे, तो आप तो ये बोलेंगे पंजाबी क्यों तुमको नहीं आती, चलो निकलो इधर से। गुजरात गया तो गुजरात बोलेगा चलो निकलो इधर से। तो प्रजातंत्र राज्य का मतलब क्या हुआ?
7: सर, अन्याय हो रहा है और ये सब गलत बात है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन नहीं आ सकता, क्या करेंगे? अभी
4: कोशिश करने के बाद भी दिक्कत आई तो क्या क्या कहेंगे आप?
7: क्या कहेंगे सर, अभी लास्ट ऑब्जेक्शन बचा है कि गांव जाने का, और क्या करेंगे फिर?
8: अभी तो मैं गांव गया तो अभी आया, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ न बना, अभी सीख रहा हूं, बस वही है, टाइम चाहिए।
9: मैं तो मालिक यही बोलूँगा कि मराठी तो हमको बोलने आएगा नहीं, न मराठी बोलूँगा, हिंदी भोजपुरी बोलूँगा, रहने देंगे नहीं, अपना अपना रिक्शा उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, वहीं चले जाएंगे मैं मालिक।
3: Right, so that's the language controversy brewing in the state of Maharashtra. Shifting our focus to this war of words between Baba Ramdev and member of parliament and actor Kangana Ranaut. Baba Ramdev has made a fresh statement. He has said, and I'm quoting, "The people of this country know who Swami Ramdev is and what his contribution has been. I do not want to make any remarks about such people of such stature." Both of them have been making remarks about each other in the public domain. Listen in to what Baba Ramdev said recently.
10: जिन लोगों का अभी क्या बोलूं मैं, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता, स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
3: Well, a lot more lined up on this edition here on NDTV on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: exactly is this hidden internet? How does it work? Who is using it? And how much of the crime happening here can investigators actually trace? This is the world beneath the internet that you know. The internet most people use every day is the World Wide Web. If a crime is committed there, investigators often have relatively straightforward methods to identify suspects. But much of the concern surrounding cybercrime today focuses on the dark net, which cannot be accessed through standard browsers like Chrome or Safari. It requires special software, such as the Tor, the Onion router. Just as an onion has many layers, users' identities are concealed behind multiple layers of routing and encryption. This anonymity is one reason the technology has attracted criminal misuse.
1: देखिए जो इंटरनेट है वो एक तरह से आइसबर्ग है जो उसका पोर्शन आप देखते हैं जिसको हम सरफेस नेट बोलते हैं वो लगभग 5% या 10% के बीच में है जिसमें आपका सारा गूगल सारा यूट्यूब सारी टाइप की सरफेस वेबसाइट्स ब्राउजिंग सब कुछ होता है और इसके लिए कॉमन ब्राउजर्स जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज़ होते हैं लगभग 80% से ज़्यादा है इंटरनेट का वो पोर्शन जिसको हम डीप वेब बोलते हैं या डीप नेट बोलते हैं डीप नेट वो पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको स्पेशल क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं जैसे कि लॉगिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसमें आपके सारे इंश्योरेंस रिकॉर्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स ईमेल्स इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है डार्क नेट वो लगभग 7 से 8% ऐसा पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउज़र चाहिए जिसको हम द अनियन राउटर कहते हैं टॉर या द अनियन राउटर क्यों उसको अनियन राउटर कहा जाता है क्योंकि वो ब्राउज़र आपकी एनोनिमिटी इंश्योर करता है
0: And it is this anonymity that makes the dark net so difficult to police. A user's real location can be concealed. The digital trail can pass through multiple countries before reaching its destination.
1: Tor में अगर कोई आपको मैसेज अपने नेबर को भी भेजना है जो आपके बगल में बैठा हुआ तो वो 20 कंट्रीज के थ्रू हॉप ऑन होते हुए जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रॉक्सी मल्टी प्रॉक्सी के प्रोसेस से आते हुए आपके नेबर के पास जाएगा तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा तो बैक ट्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इसीलिए इसको द अनियन राउटर कहते हैं
0: बट व्हाट डज दिस हिडन वर्ल्ड लुक लाइक
2: तो यहाँ पर लेफ्ट एंड सोल्ड यहाँ पर सोल्ड कितना बता रहा है लेफ्ट यूनिट मतलब ये सोल्ड सोल्ड हो
0: दिस इज दिलशान शेख A technology enthusiast since childhood. He became deeply interested in understanding the internet. What started as curiosity eventually brought him onto the radar of cyber experts. Today he assists law enforcement as an ethical hacker. What Dilshan showed us on the dark net may surprise you.
2: इसमें से हम एक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे आज और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ इजीली हमें अवेलेबल मिलेगी और हम किस तरीके से इजीली किसी का भी डेटा या कुछ भी चीज़ हम इजीली बाय कर सकते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो लीक्ड डेटाबेस होते हैं आईडी पासवर्ड के साथ वो हम यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं इनके नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ वो हिडन नेटवर्क है वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं बेसिकली वो क्या कर रहा है बंदा उनका नाम क्या है यहाँ पर नाम जो होता है एक यूजर आईडी के नाम पे होता है एंड दैट्स ऑल इसमें ना कोई केवाईसी होती है ना कोई मेल दिया जाता है आप एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उससे पासवर्ड बना दीजिए आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा
3: पेमेंट तो, कैसे होती है
2: इसमें जो पेमेंट होता है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है ब्लॉक चेन ट्रांजेक्शन के ऊपर बिटकॉइंस वगैरह में तो ये सारे लॉग्स है देखिए पेपल के लॉग्स है इसके अंदर तो ये सारे लॉग्स होते हैं बैकएंड के जो अटैकर के लिए जो हैकर्स के लिए बहुत जो स्कैमर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं तो ये सारा डेटा होता है ये आईडी कार्ड्स है जो अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज के, जो यूज़ होता है इसको फ्रॉड के तौर

0: पे आप यूज कर लो, इसको सिम कार्ड निकालने के तौर पे यूज कर लो।
1: रियल कार्ड और कितना बिक चुका है?
0: इतने यूनिट
1: 22,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो ये डार्क नेट पे आधार कार्ड अवेलेबल है।
0: हाँ।
1: लोगों के
0: लेकिन 50 प्लस इंडियन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ऑल वैलिड विद ऑल इंफॉर्मेशन, एक यूजर आईडी में डालता हूँ। सही है,
1: मतलब आपका ईमेल,
0: हाँ, यहाँ पर
1: अकाउंट कब कब उसका पासवर्ड लीक हुआ है।
0: देखिए एक जगह ब्रीच हुआ है, अगर मुझे इनका, देखिए अभी यहाँ से पासवर्ड मुझे शो कर दें, मुझे सर्विस पाई करनी पड़ेगी तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली उसे ये पता
1: तो
0: नहीं होगा,
1: ये लीक हो चुका है, तो आप
0: उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया हुआ इन शॉर्ट, तो आई कैन गेट एक्सेस टू द
1: अकाउंट।
0: एंड अराउंड 13 बिलियन अकाउंट्स इन अ लीक डेटाबेस। ठीक है,
1: तो ये 13 बिलियन अकाउंट्स का लीक डेटाबेस इनके पास।
0: करेक्ट, अभी देखिए ये काउंटर फीडिंग नोट्स है, एचक्यू प्रिंट्स करके है नाम से, तो ये डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल। अभी फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना है, तो ये एक एक्स वाई जेड वेबसाइट है, $100 ले रहा है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो,
1: टिकटॉक,
0: ठीक है। ये यहाँ पर अगर आपको अनोनिमस नंबर्स वगैरह बाय करने हैं, जो भी सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हैं, तो ये नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि टेक्स नाउ के अकाउंट है, जो टेक्स नाउ वहाँ पर अलग होता है, तो यहाँ पर मॉडर्ड मतलब किसी के नाम का आपको मिल जाएगा, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड, एक किस्म का डिजिटल सिम ही बोल सकते हैं,
1: जो साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल
0: यूज करते हैं।
1: और ये कितने में बिक रहा है?
0: $10, मतलब इंडियन 700 रुपये। इसके पीछे कौन है वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है वो यूजर नहीं होता है।
2: What Dilshan warns us about has recently happened with Bank of Baroda data. Bank of Baroda had to initiate a forensic investigation into a breach involving critical data, with reports of around 1 terabyte of data being leaked. The leaked material allegedly includes customer information, identity documents, loan papers, and internal audit reports. This incident adds to a series of cybersecurity breaches involving major Indian companies and institutions in recent months. Thousands of websites here openly operate as marketplaces for criminal activity. Transactions are conducted through cryptocurrency, making it difficult for law enforcement agencies to trace the people behind them. Maharashtra Cyber says its investigations reveal just how large this underground ecosystem can be.
1: Sir, ye screen pe hum kya dekh rahe hain is waqt?
3: मैम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लाइव जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड, सो यू कैन सी एज ऑफ नाउ टोटल अटैक्स व्हिच इज हैपनिंग करेंटली अक्रॉस वर्ल्ड, व्हिच इज द नंबर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 10,16,1,608 अटैक्स आर हैपनिंग।
1: ये लाइव फीड इस वक्त
3: yes,
1: हम देख रहे हैं।
3: यस,
1: यानी कि एक तरफ जिन कंट्रीज में वॉर छिड़ी हुई है या जो इसका टारगेट बन रहे हैं उसी समय में साइबर अटैक भी उन पे किस तरह से हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं।
3: डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डार्क वेब पे, सो दीज आर द फ्यू प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट दे आर सेलिंग, ड्रग्स, कार्डिंग डिटेल, काउंटरफिट करेंसी, सो दीज आर द नंबर ऑफ डार्क वेब लिस्टिंग्स। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि ड्रग्स सेल हो रहे हैं डार्क वेब पे मीडिया।

0: For Maharashtra Cyber, tracking offenders who hide behind anonymity remains one of law enforcement's toughest tasks. Take the recent example of bomb threat emails. Cyber investigators say such emails may sometimes be routed through anonymity-focused services on the dark web. According to investigators, anti-social elements and terror-linked actors have also attempted to misuse such digital platforms.
1: Dark web ke jo criminals hai, wo ek dark web ki anonymous email service use kare. जिस सर्विस का यूज़ करने का उन्हें बेनिफिट ये होता है कि उनके ईमेल्स को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है. जैसे आपको पता होगा कुछ सालों पहले जीमेल आउटलुक का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे और वो इजीली ट्रेस भी कर सकती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. बट नाउ दे आर यूजिंग द एनोनिमस ईमेल सर्विस विच इज़ अवेलेबल ऑन डार्क वेब. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. इसी के तरह कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डार्क वेब पे जिसका इस्तेमाल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं.
2: ओके, तो ये डार्क वेब नहीं है लेकिन डार्क वेब के फीचर
1: से जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एक फीचर है इसके इजीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिकोड नहीं कर पाते इनके SMS.
0: For investigators, the challenge is not only identifying what is happening online, but finding the people behind it. This is a dark web chat room, where users operating under fake identities interact anonymously, often attempting to buy or sell illegal goods and services.
3: क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्रिमिनल के ऐसे सोचना चाहिए. उस हिसाब से हमें क्या करना है कि ऐसे ये जो चल रही है जो क्रिमिनल है तो हमने भी उस क्रिमिनल के जैसे मैंने चैटिंग स्टार्ट कर दी तो अगर यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई देता है तो कौन तो फिर मैं उसके साथ जेन्युइन चैट करूंगा.
2: आप उसके साथ यहाँ पे इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो
3: कुछ डेटा उसका ओरिजिनल डेटा रिवील कर दे और उस अगर कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक वो कर दे तो फिर हम उस तक पहुँच सकते हैं. उनको भी मालूम है, क्रिमिनल को भी मालूम है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पकड़ा नहीं जाए. पर हमें भी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में जान के कि अगर उन्होंने टॉर भी यूज़ किया है तो वो टॉर में फिर जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल की सोच के जैसे हम देखेंगे तो हाँ तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल के पास अगर हमें जाना है तो उससे उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा.

0: In this underground marketplace, firearms, explosives, poison, and drugs are reportedly traded with few identity checks.
1: तो मैं गन्स नॉर्मल सर्च किया और हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे सामने आ गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एम्यूनिशन के, ड्रोन्स के, यूएवीज के, एक्सप्लोजिव्स के, गन्स के, नाइव्स. तो नॉर्मल मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी है कि मेरा नाम क्या है. वो मैं गलत डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैकब डाल सकता हूँ, मेरा नाम कुछ और होगा.
2: और इसके साथ साथ जो पेमेंट मोड है वो क्रिप्टो है, तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल को.
1: क्रिप्टो अपने आप में एक एड्रेस की तरह होता है. वो आपको एड्रेस से पता चलेगा उसके पीछे पर्सन कौन है. तो वॉलेट प्राइवेट वॉलेट हो सकते हैं, वो यूज कर रहा होगा जिससे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा.
2: पर यहाँ पे लोग स्कैम भी तो होते होंगे.
1: हाँ, होता है.
2: अगर वॉलेट लिंक किया तो स्कैमर्स तो भरे हुए हैं यहाँ पे.
1: हाँ,
2: अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो
1: ऑब्वियसली. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं लाइक हिटमैन्स के, जो मोस्टली वो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं. वो आपसे बस पैसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, या फिर कुछ और, हम आपको अकाउंट्स बेचेंगे या कुछ आपको डेटा चाहिए.
2: हाँ.
1: तो आपसे डिटेल्स पहले ले लेंगे.
2: ठीक,
1: हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएं किसी न किसी तरीके से, अगर आप प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं डार्क वेब को, टॉर को.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

एक है वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: लोगों ने बच्चों के स्कूल उड़ा दिए, इन लोगों ने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं जहां स्कूल है वहां क्या प्रॉब्लम, बट उनको तो स्कूल ही मिलना बंद हो गया, तो हमें क्या करना होगा?
1: द यूथ इज नॉट गोइंग टू

0: Okay,
1: I don't agree that man is not national because rational because the progress of humanity as compared to other species has happened on the evolution of rationalism. We've all been very rational to the extent, and this is something you've said, Abhijit, we are in one of the most non-violent phases of human history because of rationality, though it may seem that we were. And that's not the debate right now. The issue out here is, what is a Dimaghi Naxal? That's the broad definition. A Dimaghi Naxal versus somebody who doesn't have a dimag. Please understand the difference. There's a paper leak. The whole protest started with a paper leak. The solution of the Education Minister of India, his brilliant solution was to shut Telegram. Because जो paper leak करते हैं वो WhatsApp से paper नहीं भेज सकते वो Telegram से भेजेंगे.
0: No, I think that is an unfair comparison.
1: Why? I'll tell you why. I'll tell you why. There's a pushback from there. Please allow me. I'll tell you why there's a pushback. There's a pushback because nobody out here believes in communism or socialism. None of them. The pushback is it's not an equal society for them. They don't have the same opportunities that Netas, kids, and
0: but
1: other people.
0: That
1: allow
0: doesn't
1: me.
0: Have anything that, that, to that do with the Naxalism.
1: Who have created that has
0: the solution to inequality.
1: You
0: are again harking back to a very dangerous idea that in an unequal society you have to resort to violence.
1: Who's saying resort
0: that
1: to
0: Naxalism
1: violence?
0: Is the only answer to an unequal society?
1: Again. There is the why do you all assume or why does the government assume that dissatisfaction will lead to violence?
0: Because that is what Naxalism advocates for.
1: It's a term the Prime Minister used without any
0: basis. That is a very lived reality of our country. It's
1: and
0: not
1: that
0: a
1: lived
0: term
1: reality,
0: that the Prime Minister invented.
1: Allow me to.
0: Naxalism existed in our country
1: that's
0: until
1: true.
0: This year March.
1: Correct. And until this year, now in August 2026, as of today, left-wing extremism is on the right, is on the rise in the Northeast, particularly in Manipur. That is not the point. I completely agree with you. That is an please allow me to just allow me to finish. That is a failure of the government. The question is, when you brand your failure, their failure, to their aspirations, and then put motives on their aspirations that because they are unhappy, you accept that they are unhappy, it's not an equal society, they will resort to violence. Why will they resort to violence?
0: Okay.
1: They will resort to system being changed.
0: Just a second. I want to take more questions. Ask your
1: that
0: question.
1: I agree was a failure of the opposition.
0: Just a second.
1: That I agree with you.
0: Apna naam aur sawal.
2: Hello sir, my name is Lakshay Baba and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कोई युवा कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है बताइए
3: नहीं नहीं मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद एक लाइन में उन्होंने बोला हथियारी नक्सल समाप्त हो गए दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा बहुत क्लैरिटी
2: लेकिन अभी सर ने अभी बोला
3: इसके बावजूद
2: सर ने अभी बोला कि
3: और दूसरा
2: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं
3: वो अलग
1: इशू है 6 महीने पहले देशद्रोही था लेकिन सोनम वांछुक 6 महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे कहते सोनम वांछुक देशद्रोही 6 महीने पहले सोनम वांछुक सबसे बड़े
3: तहसीन की मुश्किल दूसरी है आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए ये एलीट लोग हैं एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं एलीट क्लास के लोग हैं इन्होंने कहा एक मिनट तहसीन इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है इसका मतलब आप समझ रहे हैं
2: सर मैं
3: इसका मतलब ये हुआ
2: इनके
3: हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं वो अनपढ़ हो गया और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है वो यही है
4: क्वेश्चन वेर देर वायलेंट राइट्स ऑन द 20th ऑफ जुलाई
5: By the Delhi police.
2: That is not violent.
4: No, that is violent. That is violent.
5: By the Delhi police.
4: There was a direct attack.
2: Violent, तो वो violent हो सकता है.
4: First
2: लेकिन
4: of all,
2: violent नहीं था.
4: No, I'm sorry. You announced that you wanted to violate section 144. The whole reason section 144 was imposed. Let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when Parliament is in session because of the 2001 Parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards Parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Naxal. Full stop.
2: अगर आप इस देश के युवाओं की बात पहले ही मान लेते तो ये सब
4: नहीं पड़ता. I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
6: No.
4: No.
6: Never.
4: Then how are they?
5: ओके आई'ड लाइक टू कमेंट
4: सो पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना आपके खुद के प्रिंसिपल्स का
0: राइट जरीवाला देन दिस यंग
5: ओके राइट टू प्रोटेस्ट राइट टू डिसेंट द स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं हुआ था इट वाज ऑल द वॉयलेंस बाय द दिल्ली पुलिस सैंक्शनड बाय अमित शाह व्हिच इज व्हाई द एंटायर दिल्ली अलाउ मी टू स्पीक यू नो आई मीन वी सॉ हाउ

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: right, let's begin with some latest news which is coming in right now, that the Chandigarh police has apprehended three persons in connection with a case involving a suspected IED and firearm. An FIR has been registered at police station 36 Chandigarh, and investigation is underway. The suspected IED and other material have been recovered from the apprehended persons. Preliminary investigation has indicated a possible plan to carry out a terror-related act in Chandigarh. So this is the preliminary information that we've got. This is about the city of Chandigarh, one of the best cities in the country, with a high security and, of course, on the borders, in the border state of Punjab. My colleague Gurpreet is joining us on the broadcast to give us more details on the story. Please tell us more, Gurpreet, what are the police officials telling you?
1: What we have learned from the police official, they say they got information in the evening, and when they learned that some people, they were roaming in the nearby area of Sector 43 near the bus stop, and immediately the police team reached there. They had apprehended these three people, and they have also recovered IED and some explosive and some weapons from their possession. The investigation is already underway. They, in the preliminary investigation, they learned it seems they are trying to do some terror related act in that area, and where they were trying to plant such things. There was no CCTV camera footage, and now they are trying to explore more and into this case to find out from where they have come and what was their motive and why did they carry this explosive along with them. So let's see that what will be the final outcome of this investigation, which is being carried out by the Chandigarh police.
0: All right. Thank you so much for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you as the investigation proceeds. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI, skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास न विजन है न ही सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
3: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
3: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ. वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
6: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते. मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है.
0: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
7: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
8: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
9: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है. पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
10: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
11: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
7: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
11: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
0: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
12: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு, வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
13: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மவுண்டு மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
14: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
15: இன்றைய சீரம், வருங்கால சீரம் நம்முடைய
16: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: The Marathi language row has triggered a political reaction, with Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav hitting out at the Maharashtra government. Yadav said that the state's mother tongue must be respected, but alleged that no language should be politicized and imposed. He claimed that such politics creates distance, discord, and questioned whether people's right to freedom was being violated. Yadav also accused the BJP of putting pressure mainly on the poor, saying not everyone has the ability to learn another language. He urged the government to keep both its heart and mind open on the issue.
17: अरे क्या बताओ यार, मुझे मराठी नहीं आता।
18: अच्छा।
17: अभी मुंबई में हो गया, बोलते हैं कि जो मराठी बोलेगा वही गाड़ी चलाएगा, कहीं तो लाइसेंस जमा कर लेंगे, 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर देंगे और 10-15 हजार रुपए की फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या बताओ, हम लोग इतना थोड़ी कमाते कि 10-15 हजार रुपए की फाइन और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए कैंसिल करेंगे।
18: अच्छा।
17: तो किस वजह से चलाए बताओ,
18: तो
17: इतना मन ही नहीं करता यार।
18: तो आप ऐसे बैठे रहोगे क्या?
17: आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। अगर मैं चलाने जाऊंगा कहीं
18: तो आपकी क्या राय है उधर, क्या राय है सरकार से?
17: मैं चाहता हूँ कि यार अभी हम लोग गाँव के लोग हैं।
18: अच्छा।
0: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
19: ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
20: ਕਾਰਵਾਈ
19: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
21: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
22: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंच

0: of this investigation, which is being carried out by the Chandigarh police.
1: All right. Thank you so much for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you as the investigation proceeds. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatro Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatro Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं, तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी.
3: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
1: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
3: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
6: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
1: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
7: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
8: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
1: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
9: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
10: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
11: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the.
7: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange, because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, Now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
11: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
1: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
12: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு
13: பாருங்கள். அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கவங்கள நீங்கள் மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல் அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
14: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
15: இன்றைய சீரம் வருங்கால பீரம் நம்முடைய மாண்பு
16: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
17: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
18: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
19: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
1: वेल, लॉट्स मोर लाइंड अप ऑन दिस एडिशन ऑन द अदर साइड ऑफ अ वेरी क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
20: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
21: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
22: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
23: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership. Our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
24: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
25: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
26: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal ties.
27: Join me at NDTV World a week share, ideas across border in Kathmandu on August 27th. As we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
20: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: right, let's begin with some latest news which is coming in right now that the Chandigarh police has apprehended three persons in connection with a case involving a suspected IED and firearm. An FIR has been registered at police station 36 Chandigarh, and investigation is underway. The suspected IED and other material have been recovered from the apprehended persons. Preliminary investigation has indicated a possible plan to carry out a terror-related act in Chandigarh. So this is the preliminary information that we've got. This is about the city of Chandigarh, one of the best cities in the country, with a high security and, of course, on the borders, in the border state of Punjab. My colleague Gurpreet is joining us on the broadcast to give us more details on the story. Please tell us more, Gurpreet, what are the police officials telling you?
1: What we have learned from the police official, they say they got information in the evening, and when they learned that people, they were roaming in the nearby area of Sector 43 near the bus stop, and immediately the police team reached there. They had apprehended these three people, and they have also recovered IED and some explosive and some weapons from their possession. The investigation is already underway. In the preliminary investigation, they learned it seems they are trying to do some terror-related act in that area, and where they were trying to plant such things. There was no CCTV camera footage, and now they are trying to explore more and into this case to find out from where they have come and what was their motive and why did they carry this explosive along with them. So let's see that what will be the final outcome of this investigation, which is being carried out by the Chandigarh police.
0: All right. Thank you so much for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you as the investigation proceeds. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI, skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास न विजन है न ही सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
3: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
3: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ. वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
6: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते. मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है.
0: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
7: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
8: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
9: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है. पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
10: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
11: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
7: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
11: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
0: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
12: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு, வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்கள்.
13: அதனால் நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மவுண்டு மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியாக உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
14: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
15: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய
16: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர்தான் இருக்கலாம்.
0: And And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
17: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ
18: ਕਾਰਵਾਈ
17: ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
19: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
20: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
0: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
21: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
22: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
1: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
2: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
18: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World Aviksha.
23: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
24: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal ties.
25: Join me at NDTP World Anviksha.

0: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
1: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
2: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
3: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
4: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
5: Chini ke badhe hue daam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
6: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी।

0: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
1: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते, मैं ऐसा मानता हूं। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
2: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
3: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
4: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
5: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha, उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
6: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है, उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी।

0: action if an apology is not issued within the next 24 hours.
1: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
2: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
3: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएमआर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
0: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
5: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
6: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
7: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
8: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World Aviksha.
9: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
10: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal ties.
11: Join me at NDTP World Aviksha. Ideas across border,
6: in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.

0: from where they have come and what was their motive and why did they carry this explosive along with them. So let's see that what will be the final outcome of this investigation, which is being carried out by the Chandigarh police.
1: All right. Thank you so much for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you as the investigation proceeds. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी.
3: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
1: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The Grand Old Party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
3: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.

0: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
1: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
2: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
3: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
1: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
4: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
5: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फ़ायदा हो रहा है।
6: Sugar prices are soaring and it is causing distress and unrest, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
2: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange, because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted when we import crude oil. Then now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
6: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
1: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
7: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
8: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும், இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும், கட்சிகளை உடைப்பதிலும், ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும், குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல, அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
9: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல, எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
10: இன்றைய சீரம் வருங்கால பீரம் நம்முடைய
11: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
1: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
12: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
13: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
14: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
1: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
15: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
16: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
17: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
18: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
19: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
20: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
21: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal tie.
22: Join me at NDTV World a week share, ideas across border in Kathmandu on August 27th. As we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
15: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For 3 decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable.
1: Welcome back. A special report. The Trump administration's battle with U.S. media is taking a new turn. The Pentagon has fired the editor-in-chief and a senior reporter of Stars and Stripes after they publicly opposed any interference in the paper's editorial independence. The move is now raising fresh questions over the press freedom inside U.S. military. Here's a report.
0: The Pentagon fires the top editor of Stars and Stripes. Editor-in-chief Eric Slavin and a senior reporter were dismissed for insubordination. Slavin says he was fired for opposing censorship at the military newspaper. The paper is partly Pentagon-funded, but has long maintained editorial independence. The firings came days after Stars and Stripes reported on grim conditions aboard the USS Abraham Lincoln. The carrier has been deployed in the West Asia since February. The report also drew fresh criticism of Trump's handling of the war with Iran. The USS Abraham Lincoln is now set to be replaced by a new carrier strike group. The dismissals come amid a broader Trump media confrontation. The administration has sharply restricted Pentagon access for journalists. Trump's administration has also clashed with the New York Times, Wall Street Journal, CNN, and other outlets. Now, the Stars and Stripes firings have reignited the debate over press freedom and military oversight. Bureau Report, NDTV, World.
1: A key terror facility in Pakistan that was targeted by India during Operation Sindoor is reportedly operation yet again. The much-talked-about Bahawalpur complex linked to Jaish-e-Mohammed has been rebuilt, raising fresh questions over Pakistan's handling of terror infra on its soil. A closer look at this facility, its history, and its reported revival. A special report. Months after Operation Sindoor laid bare Pakistan's terror infrastructure, the Bahawalpur facility is back in business. The Bahawalpur facility sits inside the Markaz Subhan Allah complex, roughly 100 kilometers inside Pakistan's Punjab province. It is considered a key operational hub and training center for Jaish-e-Mohammed. The facility was severely damaged after India's high-precision strikes during Operation Sindoor in May last year. The restoration comes after earlier reports had already flagged active rebuilding at the site. But reports now allege the reconstruction was backed by Pakistani state funding. 25 crore Pakistani rupees was provided to Jaish-e-Mohammed in cash installments. Of that, 11 crore rupees was reportedly spent on renovating the central hall. But Bahawalpur's significance goes far beyond the building itself. The camp has been long associated with Jaish-e-Mohammed's operation against India. The group has been linked to the 2001 Parliament attack, 2016 Pathankot airbase attack, and 2019 Pulwama suicide bombing. The Pulwama attack was also reportedly planned in Subhanallah camp, and the facility was at the heart of India's May 7 strike. JAM said 10 relatives of its founder Masood Azhar were among 13 people killed in that attack. JAM was banned by Pakistan in 2002, yet the group has continued to operate from the country, with its chief Masood Azhar and other senior leaders reportedly remaining in Pakistan under state protection. Bureau Report, NDTV World. Well, that's a special report, and much more goes up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching.

0: To organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
0: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
7: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
0: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugar cane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugar cane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
8: Chini ke badhe hue dam yakeenan sarkar ke liye chinta ka vishay hai. Sarkar ke bhitar isko lekar charcha ho rahi hai ki kaise jald se jald isko niyantrit kiya jaye. Jitna production apekshit tha उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
9: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
10: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, not just amongst the farmers and the middle classes, but also politically. So we are here with senior member of Congress, Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the
6: argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange, because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
10: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
0: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
11: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
12: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கவங்களை நீங்க மௌனம் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷன் எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல் அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
13: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
14: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய
15: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
0: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
16: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
17: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
18: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
0: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
19: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
20: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
21: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
22: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
23: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
24: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
25: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal tie.
26: Join me at NDTP World Anviksha, Ideas Across Border, in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
19: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For 3 decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable.
0: Welcome back. A special report. The Trump administration's battle with U.S. media is taking a new turn. The Pentagon has fired the editor-in-chief and a senior reporter of Stars and Stripes after they publicly opposed any interference in the paper's editorial independence. The move is now raising fresh questions over the press freedom inside U.S. military. Here's a report.
27: The Pentagon fires the top editor of Stars and Stripes
1: Editor-in-Chief Eric Slavin and a senior reporter were dismissed for insubordination.

0: Tare and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organizational experience and state level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजॉर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है. राहुल गांधी जी,
2: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
3: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
4: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
0: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
2: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको

0: this investigation, which is being carried out by the Chandigarh police.
1: All right. Thank you so much for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you as the investigation proceeds. BJP National President Nitin Naveen unveiled a new Gen Z outreach team, with Rahul Gandhi, on the other hand, continues to organize the Chhatron Ki Goonj event across the country. Both political parties trying to woo the younger generation. BJP's team brings together Nitin Naveen, Harsh Sanghvi, Smriti Rani, Vinod Tade and OP Chaudhary, a mix of the young leadership and organization experience and state-level heft. The BJP's Gen Z outreach is going beyond the traditional rallies, taking the conversation to campuses, government schools, social media, emerging spaces, AI, skilling. We also have Rahul Gandhi, on the other hand, who's intensifying his youth outreach. The event we spoke of, Chhatron Ki Goonj, placing women's identity, independence, aspirations at the heart of this message.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना ही सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए वो इस तरह की बेतुकी बातें कर देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ही इज रिजोर्टिंग टू चीप सेंसेशनलिज्म फॉर ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी.
3: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है. मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें.
4: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है. ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है. जैन जी रूठे हुए हैं.
5: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
1: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
3: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है. मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है. वंदे मातरम का पूरा मंचन पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं.
6: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
1: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed the move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli, questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
7: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
8: Rahul Gandhi ji being portrayed by his party as Batman, I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
1: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
9: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा।
10: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है।
11: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस, बट ऑल्सो पोलिटिकली। सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
7: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, Now you are

0: लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
1: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम।
2: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
4: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
5: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
6: Hello, I'm Shashi Tharoor, and beyond statecraft and former treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bonds.
7: I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World a week share.
8: Seamless trade and strategic cross-border investments are real drivers of modern growth.
9: Understanding the past and present is the key to unlocking the future in India-Nepal ties.
10: Join me at NDTP World Anviksha, Ideas Across Border, in Kathmandu on August 27th as we explore Nepal's role in changing the world. Don't miss it.
3: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For 3 decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable.
2: Welcome back. A special report. The Trump administration's battle with U.S. media is taking a new turn. The Pentagon has fired the editor-in-chief and a senior reporter of Stars and Stripes after they publicly opposed any interference in the paper's editorial independence. The move is now raising fresh questions over the press freedom inside U.S. military. Here's a report.
11: The Pentagon fired

0: He is resorting to cheap sensationalism for traction on social media. आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप जो महिला सशक्तिकरण की गुहार लगा रहे हैं, अगर आप इतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं, तो आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पुरजोर मुखालफत क्यों करी? लाल बटन दबाकर इस बिल के विरोध में वोट क्यों किया? इस विधेयक को गिराया क्यों? क्यों? क्योंकि आपके लिए नारी सशक्तिकरण केवल और केवल एक चुनावी जुमला है राहुल गांधी जी।
1: कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें।
2: नहीं नहीं, वो जो गैप हो गया है वो गैप पूरा रहेंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह उसका विजन है, वो जो देश को देखना चाहते हैं, सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन जॉब इसका संपर्क है। ये भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जैन जी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है, जैन जी रूठे हुए हैं।
3: They have understood that the youth are against them. The CJP agitation and various youth agitations have made them understand that people, youth are against them. Because of they think that they can collect youth. But the youth raise certain important issues like anti-NEET exam, NET exam. All those things will go against this government. They have understood that next time they cannot win. That is why they want to somehow appease the youth. So they are doing all those things.
4: And politics, as expected, has erupted over Rahul Gandhi's student outreach in Pune. BJP has hit out Rahul's event, alleging that the party brought a paid crowd and paid influencers to increase the attendance at the event. BJP has also questioned the impact of Rahul Gandhi's outreach, saying there is no real impact on the youth in ground. The grand old party has hit back, rejecting BJP charges. Congress says students and youth, they came to listen to Rahul Gandhi and share their thoughts on the issue, and no one was brought to the event by offering money.
1: कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई, उन्होंने धर्म का आह्वान किया है। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं।
5: महाराष्ट्र की जो जेंजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है।
4: Well, a Batman-themed portrayal of Rahul Gandhi right outside the Congress headquarters has triggered a fresh political row. The poster shows Rahul in a Batman-style avatar with the message saying he's a silent guardian. Rahul's portrayal of Batman has now become the latest flashpoint between the Congress and the BJP. The Congress has embraced the heroic portrayal of Rahul Gandhi, while the ruling party has slammed a move, questioning the political message. You have Pawan Khera, who has praised the image, but BJP has hit back with spokesperson Nalin Kohli questioning the choice to portray Rahul Gandhi as a comic book character.
6: I'm not surprised if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
7: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
4: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
9: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है.
10: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंग्स द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस, बट ऑल्सो पोलिटिकली. सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pawan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
6: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
10: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
4: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotia said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
11: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க நேஷனல் லெவலில். நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேறு யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்கள் எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்கள்.
12: அதனால நீங்கள் ரசிகர் பண்ணுற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்கள் மவுண்டு மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டீலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற, எங்களுடைய மோடு வேற.
13: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு, புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
14: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய
15: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும், டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
4: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwan Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
16: Dekho, mainu lagda hai ki ilzaam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhanne bebuniyad ilzaam laaye ne unna de dat ke samna karan layi puri taiyar ha. Main na pehla ghabrai si na main ajj ghabrauni ha. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
17: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीज़न को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
18: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को, दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात।
4: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned.

0: surprise if people are comparing him with Batman. Batman didn't have any superhuman capabilities. He had the conviction. He had the resilience. He had this hatred for injustice. That's what Mr. Gandhi also has. He doesn't need a cape. He needs a white t-shirt.
1: Rahul Gandhiji being portrayed by his party as Batman. I don't know how appropriate that is, because that is a cartoon character from a comic series. Now, that is prone to interpretation by some set of people that, you know, he's being projected as a cartoon character from a comic series. Now, if the Congress party believes that that is the appropriate way they wish to project their leadership, who's the leader of opposition in the country, then really it's for them to take a decision on it.
2: Sugar prices are now at the center of a fresh political face-off between the government and the opposition. Congress MP Manish Tiwari has alleged that a significant amount of sugarcane is being diverted towards ethanol production, which he claims is putting the pressure on sugar availability in the country and pushing up the prices. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has made a similar charge, alleging sugarcane supplies are being diverted for ethanol production, attacking the government over the broader rise in the cost of living. The government has rejected the opposition's claims. Government has said ethanol production is not driving these prices, stressing that the adequate sugar stocks are available in the country and a stable supply is being ensured.
3: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है. सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए. जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्प्ररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा.
4: चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियां ख़राब हो रही हैं. भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियां ख़राब होंगी. और इसके ऊपर बहुत व्यापक जाँच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फायदा हो रहा है.
5: शुगर प्राइसेस आर सोरिंग एंड इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड अनरेस्ट, नॉट जस्ट अमंगस्ट द फार्मर्स एंड द मिडिल क्लासेस बट ऑल्सो पोलिटिकली. सो वी आर हियर विद सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस Mr. Pavan Khera, who is going to talk about how the sugar prices are going to impact the...
0: The argument that the government gave for introducing ethanol was that we'll save on foreign exchange because a massive bulk of our foreign exchange gets wasted while when we import crude oil. Now that argument gets defeated. In the process of saving foreign exchange on account of crude oil, now you are ending up spending foreign exchange by importing sugar. What is more important? What is the priority of this government? Food security or fuel security? Ask them this question.
5: Thank you, Mr. Khera. And this is Deeksha Bhardwaj for NDTV.
2: Well, yet another pitch for Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the potential prime ministerial face gaining traction within the TVK. The Congress party has hit back at TVK over its growing national ambitions. Congress MP and Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tekor has taken a jibe at TVK leaders, saying they are still in the fan club mode. The Congress MP also stressed that the Congress way of working is very different from that of the TVK, drawing a distinction between the two parties. The remarks come after several TVK leaders backed Vijay for a larger national role. Tamil Nadu Minister K. Sengotian said that Vijay has the capacity to rule the nation in the future. Another TVK minister, Jagdishwari, said today's chief minister is tomorrow's prime minister. Voices and reactions on the story.
6: அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீடர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியராக ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க, எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
7: அதனால நீங்க ரசிகர் பண்ற போர்டில் இருக்கிறவங்களை நீங்க ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே தெரியும் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு. அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு எதிர்கட்சிகளுடைய அதிகாரங்களையும் பிடுங்குவதிலும் இடியையும் சிபிஐயும் உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்துவதிலும் கட்சிகளை உடைப்பதிலும் ஜனநாயகத்தை இல்லாமாக்குவதிலும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் டிலிமிட்டேஷனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அசாம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி புது தொகுதிகளை வரைவு செஞ்சு எந்தெந்த பூத்தெல்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த பூத்தெல்லாம் டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுதியை உருவாக்கி அந்த தொகுதியில் பாஜக எம்பிக்களை உருவாக்குறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கு பாஜக. அந்த ஃபார்முல அந்த ஃபைட்டில் இருக்க நாங்கள். அவர்களுடைய மோடு வேற எங்களுடைய மோடு வேற.
8: நான் புரட்சி தலைவரோடு பயணத்தை மேற்கொண்டவன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடும் பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இரு தலைவரை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த தலைவர் வழியில் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற சக்தி மட்டுமல்ல எதிர்கால இந்தியாவை ஆளக்கூடிய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள்.
9: இன்றைய சீரம் வருங்கால சீரம் நம்முடைய
10: அதுதான் நம்ம தளபதி. எங்க போனாலும் அங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும். டெல்லிக்கு போனாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாளைக்கு அந்த டெல்லியே கூட அவர் தான் இருக்கலாம்.
2: And a political row has erupted in Punjab over allegations against Chief Minister Bhagwant Mann's wife, Gurpreet Kaur. She has been accused of demanding a 5 crore rupee bribe, allegedly to suppress a rape case. Following the allegations, Gurpreet Kaur initiated legal proceedings against a former judge, calling the claims baseless. She said she was not intimidated in the past, nor would be intimidated now. With this, the National Human Rights Commission has taken a note of the complaint, directed the Punjab government to probe the allegation. Chief Secretary, DGP, they have to submit an action taken report. Congress MP Raja Waring has demanded a CBI inquiry, asking Chief Secretary and DGP to place the facts before the National Human Rights Commission. On the other hand, Aam Aadmi Party has dismissed the allegations as baseless and threatened legal action if an apology is not issued within the next 24 hours.
11: Dekho, mainu lagda hai ki ilzaam laune bahut sokhe ne, bebuniyad gallan karniyan bahut sokhiyan ne, te main jehde vi unhanne bebuniyad ilzaam laaye ne unhan de dat ke samna karan layi puri taiyar haan. Main na pehla ghabrai si na main ajj ghabrauni haan. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
12: ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
13: एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि CMR को और CM रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि

0: बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात।
1: Well, lots more lined up on this edition on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay.